अहम हेता क्वम हेता नाम हेता मा खाया लौम चवाते ओ बे हेतम ये नाम पाचित ये शिवने।

अन्नाचंगो योग सकी पम नमक नमोश्यांगे यमो ओ विन मक्त वन लव ये पे हर यर हर यय हर यर नय हे यो हे।